सिर्फ 20 या 25 दिन में हम आपके गंजे सर को इंशाल्लाह बालों से भर देंगे। सर की जिस जगह से आपका बाल गिरा है बिल्कुल अल्लाह के करम से उसी जगह पर बाल आपका वापस आएगा, वो भी इंतहाई तेजी के साथ, और इंशाल्लाह फिर मरते दम तक आपके बाल गिरेंगे नहीं। ये ऑयल सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दफा आप सर पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के करम से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल, खालस और एक नंबर है। इसमें अल्लाह के करम से किसी किस्म का कोई झूठ और गलत बयानी बिल्कुल हरगिज नहीं है। इसके अलावा बालों की हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, चाहे बाल चर है, खुश्की है, सिकरी है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है। अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।

इसी के साथ हमारी जितनी भी उर्दू लिस्टर उर्दू सुनने वाले उससे भी यही इल्तिजा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आया करें हमारे साथ अजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम में, हमारे साथ शराकत कर लिया करें। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है और बिल्कुल आप लोगों के लिए है, आप लोग स्किन केयर के लिए बालों के लिए है, तो फिर एक दफा लाजिमी इंतहा कर लिया करें। और आज तो आप सब लोग जो है मेरे ख्याल में मेरे साथ आए मुझे मोटिवेट कर ले, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे बिजली का कोई मसला चल रहा है। मेरे ख्याल में कुछ घंटों से यहाँ बिजली नहीं है, तो यूपीएस में बिल्कुल चार्ज कम है। तो आप यकीन कर ले, अल्लाह पर यकीन कर लेना कि इस वक्त मैं स्टूडियो में बिल्कुल इवन पंखे के अलावा तो क्या लाइट भी ऑन नहीं है। तो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीन की जो है ना क्या चल रही है, लाइटिंग चल रही है। तो इससे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आया करें हमारे साथ प्रोग्राम में, शराकत कर लिया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए। तो जितने भी हमारी उर्दू लिस्टर उर्दू सुनने वाले, चाहे वो टांग में है, अवाना में है, मानसेरा में है, या आटक में है, या आटक से अलावा किसी भी इलाके पटाबाद के इलाके में है, तो बिल्कुल लाजमी आया करें और हमारे साथ प्रोग्राम में शराकत कर लिया करें। ठीक है जी, नदीसर जमुंग सुमरूम लिस्टर दी استعمال

ओके जी। और इसके अलावा अक्सर अब मेरे नाम का मसला होता है ना कि हर कोई मुझसे पूछे भाई आपका नाम बहुत मुश्किल है, आपका आपका नाम जो है ना क्या है। तो मेरा नाम, मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम हसाम है, हसाम HASAM हसाम लोदी, ठीक है जी। तो हसाम लोदी मेरा नाम है। कोई अब मुझे हाशिम बोलता है, कोई मुझे हसन बोलता है, और कोई मुझे शाहीन बुलाता है। तो ना मैं शाहीन हूँ ना हाशिम हूँ, ये बहुत प्यारे नाम है, लेकिन जो मेरा रियल नाम है ना, तो मेरा सी नाम है। आप मुझे

0: जब आप लोग कॉल कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम लोदी भाई डे। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, देर से आता मैंने जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम
1: वालेकुम भाई
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल, और मस्ता सो आवाज तासु जमा आवाज ना हो रही। अच्छा जी, सब ना बात कर रही हूँ अटक से, सब ना मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ इसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान के। सबना गुड मॉर्निंग टू, आप मेरे साथ बात कर लेना, आप अरे आप रेडियो के ना सुने ना, रेडियो रेडियो आप बाद में सुने ना।
1: अच्छा सुन रही हूँ,
0: तो आप बात कर लेना, रेडियो को रेडियो के वॉल्यूम को स्लो कर ले, मेरे साथ बात कर ले, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हो?
1: बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
1: मैं पहली बार आपको कॉल कर रही हूँ, मैं फिर तो मैं रोज करती
0: हूँ। नहीं मुझे भी लग रहा है कि सपना बहन जो है ना मेरी मेरे साथ पहली दफा कॉल कर रही है, और ये बताया जी जी जी
1: रोजाना करती हूँ।
0: हाँ मैसेज बिल्कुल आप रोजाना करते हो, कॉल आपने पहली दफा कर लिया। हाँ इसलिए तो बार बार रेडियो पे अपनी आवाज सुन रही है, तो ना सुना करे वो, बाद में सुन ले, अभी मेरे साथ बात कर लिया करे, ठीक है।
1: अच्छा आप मुझे क्रीम बता सकते हैं, मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग है इसके लिए।
0: तो फार्मूला ब्यूटी क्रीम बेहतरीन ऑप्शन है आपके साथ।
1: इस्तेमाल करना है
0: उसको सिंपल, आपने इस्तेमाल करना है उसमें, मतलब वो जो हमारी फोर इन वन है ना, उसमें मतलब आपको विटामिन सी कैप्सूल, ब्यूटी सीरम मिल जाते हैं। ये जो ये सिंपल क्रीम है इसको आपने रात के वक्त को इस्तेमाल करना है।
1: फार्मूला ब्यूटी क्रीम
0: जी जी जी जी जी, इसका इस्तेमाल बिल्कुल सिंपल है सपना, आपने इस तरह करना है ना। अभी मैं बता दूँ या आप रेडियो पे बता दूँ? अच्छा इस तरह आपने करना है ना, इसके साथ आपने एक फेस वॉश लेना है हमारी, अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है? आपकी स्किन ऑयली है?
1: नहीं ड्राई स्किन है।
0: अच्छा फिर आप एलवेरा फेस वॉश ले ले, ठीक है इसके साथ। तो जब आप रात के टाइम जब नमाज आप पढ़ लेते हो ना, जब सोते हो आप किस टाइम, ठीक है तकरीबन 9 बजे के बाद आप इस तरह कर लेना कि फेस वॉश पे अपने चेहरे को साफ सुथरा कर ले, ठीक है। उसके बाद आपने तावल से आराम से जो है ना अपने फेस को खुश कर ले, ठीक है। उसके बाद पूरे चेहरे पे इतना फार्मूला ब्यूटी क्रीम लगाए,
1: इससे रंग भी साफ होता
0: है इंशाल्लाह। इससे रंग भी साफ नहीं, इससे रंग गोरा भी हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा, गोरा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। 7 दिन या 5 दिन बाद आप मुझे वापस खुद कॉल करोगे, हसाम भाई आपने जादू वाला क्रीम मुझे बताया था।
1: आप भी ये लगाते हो?
0: हाँ कभी कभी, लेकिन किसी को ना कहे, ठीक है।
1: अच्छा ठीक है।
0: हाँ जी,
1: नहीं कहती मैं किसी को भी।
0: नहीं नहीं मैं भी लगाता हूँ ना, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा काला था, मैं बिल्कुल लोग मुझे कालू कहते थे, अब मैं लेकिन हद से ज्यादा काला था ना, अभी मैं थोड़ा बहुत खूबसूरत हो चुका हूँ। ये कंपनी में रहता हूँ ना, तो उसकी वो क्रीम की हवा भी मुझ पे आती है, तो उससे भी मैं खूबसूरत हो चुका हूँ।
1: किसकी हवा से?
0: क्रीम की हवा से ना, इधर दिन में भी होता हूँ रात में भी होता हूँ ना, तो इस वजह से।
1: अच्छा हाँ, पिशावर में?
0: जी जी मैं पिशावर से।
1: अच्छा ठीक है, मैं से क्रीम कितने तक मिल जाएगी?
0: अटक में
1: नहीं, हिजरों में।
0: हिजरो में? अच्छा अब मैं हिजरो का एड्रेस रेडियो पे बताता हूँ, ठीक है। आप जो है ना वो सुन ले, ठीक है।
1: ये कितने तक मिल जाएगी?
0: ये 400 तक। 400 तक?
1: और वो जो फेस वॉश है?
0: फेस वॉश में मेरे ख्याल में 400 तक।
1: अच्छा ठीक है
0: इंशाल्लाह, ठीक। चलो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ हिजरो का, ठीक है। या अल्लाह अभी मैं ढूंढता हूँ ना, अभी मुझे बिल्कुल हाफिजे से याद नहीं है कि इस हिजरों में कहाँ मिल जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं देखता हूँ और देख के मैं आपको बताता हूँ।
1: अच्छा ठीक, कौन था?
0: या अल्लाह आप मेरी आवाज रेडियो पे सुन ले, रेडियो पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ, ठीक है?
1: अच्छा ठीक है, सुन रहे श्याम भाई।
0: ओके जजाकल्ला, बहुत ज्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।
1: श्याम भाई
0: जी,
1: एक पोएट्री तो सुना देना।
0: अच्छा मैं सुनाता हूँ, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जी मेरी बहन पूछ रही है कि क्रीम हिजरों में कहाँ मिल जाएगी और कितने कितने तक मिल जाएगी। तो मेरी प्यारी सी बहन, आप इस तरह करना ना कि हिजरों में हमारी इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की क्रीम आपको न्यू सुपर तारिक कॉस्मेटिक एंड होलसेल डीलर ममरीज खान मार्केट मेन बाजार हिजरों में और लंदन कॉस्मेटिक मीना बाजार हिजरों में, वाजिद कॉस्मेटिक मीना बाजार हिजरों में हमारी इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की क्रीम मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको एड्रेस चाहिए तो हमें बता सकते हैं, हम हमारी टीम जो है ना मैसेज के थ्रू आप बिल्कुल भेज देंगे। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर को चाहिए एड्रेस चाहिए जो भी चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मौजूद है, हमारा टीम आपको जल्द ही रिस्पांस देगा, ठीक है जी? 0335 435 3515।

डर से हम नमक बंद कर देते हैं, अल्लाह की देर से हम हराम खाना बंद कर देते, अल्लाह की डर से हम हराम खाना बंद कर देते बंद नहीं करते। मसर फ्राम अटक, बिल्कुल जी, मसर हमें चाहिए कि हम इस बातों पे अमल करें। हर कोई कहता है ना कि इस तरह करनी चाहिए, इस तरह करना चाहिए, तो हम खुद भी ये बात है ना, हम सबसे पहले हम खुद में लाएंगे, जब हम खुद में लाएंगे तो फिर दूसरों को भी कहते हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस पे अमल भी करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे।

में तो बहुत ज्यादा हैवान वजीरस्तान में है नरगिस्तान। आप किस बारे में कह रहे हैं नरगिस? मुझे आपकी मैसेज समझ नहीं आई। सलाम जी मैडम नौरीनियम द मैडम नौरीनियम द कम स्टेशन दे जी प्रोग्राम औरम। वालेकुम अस्सलाम मैडम नौरीन दा ची कम दे तासु द कम चैनल प्रोग्राम प्रोग्राम और उस मात तासु है के ना प कम फ्रीक्वेंसी बानी और तासु फ्रीक्वेंसी आ रे के जबर तो बिया हुआ है मैं। सलाम भाई हुई मतलब की दुनिया मतलब के लोग दोस्ती हमारी और जलते हैं लोग वाह वाह वाह वाह वाह वाह। गुलाल अली फ्रॉम तोड़ेट थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम गुलाल अली। मतीउल्ला शेख सुल्तानिया दादरू दी चिशल शलकी गिन लालिया तराऊ खान दी चिशल नशवा ब्या गो गोरमा के ब्या सोई।

लें, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपने पूछना है, आपके चेहरे पे दाग है, दबे हैं, दाने हैं, इग्निस हैं, आंखों की नीचे काले हल्के के उससे आप लोग परेशान हैं, तो बिल्कुल जी आए हमारे साथ प्रोग्राम में शराकत कर लें, हमसे पूछें, हम

और ये जो है ना और ना बढ़ाए, जब आप नाराजी नाराज हो जाओगे तो दो तीन चार पांच दिन फिर अली भी नाराज हो जाएगी, चलो ओ मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, तो और भी इख्तिलाफात बढ़ जाएगी। मुश्किल में मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त में सिर्फ दोस्ती काम आती है, अच्छे दोस्त का पता ही लग जाता है, ताकि अच्छे दोस्त का यही इसी चीज से पता लग जाता है ना कि वो आपकी मुश्किल वक्त में काम आता है। मुश्किल

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम संगे आसम भाई।
0: जी बिल्कुल जी ठीक ठाक हम तासु संगे।
1: माना जी खई होता तुम करम खई वन खई।
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मा सर सो खबर की उदी चरतना।
1: ये मतलब खबर कम दवाने।
0: आ मतीउल्लाह से भार के लिए दरते हम सुड़ी मशी दरतो आयमा।
1: फसल फसल नहीं मतलब ये मतोला नहीं।
0: नेमतुल्लाह जी ने बखना ग्वाड़ा मगर खा गुसरा तो नशी خوشحالی
1: نو

जी खुशू अरविदुन को उस पर द परमानेंट ब्यूटी स्किन केयर चिकम दी अगे प्रोडक्ट टू पहावाले से रतासुता च खबरे अतरे को याद सा तो च परमानेंट कॉस्मेटिक स्टूल प्रोडक्ट चिकम दी आदि तासु सर निज दो टूल दुकानदार अनुसार तासु हसानी सर अखिस्ता है सो खुशू अरविदुन को द परमानेंट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चिकम दी अगे पहावाले सर च किस्म खबर भी च किस्म मालूम तखिस्तल क्वाड़ो नुमा नंबर याद सा तो 0304-992-5388 ग्रानू कदरमनु अरविदुन को नन सभा दौर से दे स्किन दे जिल दे खपले जान ख्याल सातल हिफाजत कौल चुकुम दी दादे सिर्फ जनाना होना बल्कि दे सड़ो दे पारा हां इंतहाई जरूरी दे याद सा तो चिकम खलक पलमर बने कार कई ढेर खलक सड़ी चिकम दी दा खुसुसन सड़ी चिकम दी आगा पलमर बांधे कार कवि आओ दे कार वजह ना चिकल दो पलमर बांधे कार कई नो दा दियो स्किन चिकम दा अगर रूटीन चिकम दा आम मुतासिर से आओ वक्त न वक्त दे दो चेहरा चिकम दा दे दो स्किन चिकम दा आ मुतासिर कीजिए सब चूंकि तफसीलन पदे हवाले सर खबर को आवर सरबा तासोता दे परमानेंट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चिकम दी अगो प हवाले सर हां खबर को चिकम इस्तेमाल सरा तासो दीदी प्रोडक्ट पो इस्तेमाल सरा खपल दा मसली चिकमी दी आ बहल कबूल है सो खुशू अरविदुन को परमानेंट कॉस्मेटिक्स दे तासो दे पारा अगो ख्वाइंदु रूनो दे पारा तैयार सलाहदा चिकुम दे नूरो प्रोडक्ट इस्तेमाल बने स्टडी से और दो तच फायदा न दारा से दले ग्रानु कदर मनु अरविदुन को नन सबा चरंगमा खबर दे तौक जदीद दौर दा खुशली वाला है सेहतमंद जिल्द हर यो का ख्वाहिश जोड़दा कदे मुश रोजाना दिलमर तच वतु नबाद चिकमे तेज शुआगान ही पमखबान राजी आलूदगी गर्द गुबार राजी मुख्तलिफ किस्म दे गाड़ो और दे नूर शानु चिकम लुगी राजी या दे जहनी दबाव तमुचा उकुरु नो दगे लवाजेना ने मुर्स जिल चिकम दा ने मुर्स स्किन चिकम दा अगे खपल कुदरती चमक चिकम भी आका में भी लगे आदा दे पर नतीजे से रंग चिकम दा आखरा पीजे वक्त नमकता इंसान मख चिकम दा आ वचाव दी या ब्या दासे से छे मखे चिकम दा हर वक्त गौर गौर कीजे दागे खुना दबे आओ दी सरा चाहिया चिकम दे यानी तोर तोर तपे चिकम दे आगा पमख बांदे रोजी आओ बाज औकात वक्त नमकता इंसान पो चेहरे बांदे दे जड़बूटी वाली यानी बूढ़ा बूढ़ा खुनी इंसान खुदाए बूढ़ा बूढ़ा शिकारी वजह ची वजह दाई ची दाए शिकम रोटी ने भी आगा सही ने भी खुशो अरविदुन को दे जरूरत तकतो सरा परमानेंट ब्यूटी खपल जो मुकम्मल स्किन केयर शिकम रिंद आम मुतारिफ करे दे शिकम वजह ना मुख्तलिफ मसनुआत शिकम च शामिल दी और दा प्रोडक्ट चिकम दा दा देतासु स्किन देतासु जिल देखभाल यो अहम और खास पहलू अदा कवि वजो अरविदुन को दे सर दे छे ख्वाता यानी दे परमानेंट छे परमानेंट राइज फेस वाश दा दा फेस वाश चिकम दा दे तासु स्किन दे तासु जिल्द गहराई सरा सफाई कवि दा गर्द गुबार इजाफी चिकनाई और रोजाना पो बुनियाद बने